0: मेहमानों को खुश कर जाए। मजेदार लज्जतदार सा स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़, जब जी चाहे शौक से खाए,
1: करम को लम
0: सेक के खाए, तल के खाए। मजेदार लज्जतदार सा स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़।